द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता बिदनन्ना। कृष्ण जथा मात चरित्र।

आए कब बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याए पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मो कोटिक बिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सास करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुरग बास रगबर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई जो एह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निगट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद शुआ सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार स्तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रगबर कथा प्रसंग दोहरा

सवैया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र।

गुर ते जानी सुन ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया भर पूरे बिनमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुन ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया।

देवी अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चती तो दिठे सचे पातशाह

0: है बेनती की महाराज तुहाडे नालों सियाणा कोई नहीं है
1: इन सम सेवक अपर न बीओ
0: सो इन वर्गा सेवक भाव गुरु अर्जन देव जी वर्गा सेवक होर कोई नहीं है
1: जिम आए समय वासा कियो
0: जिवे इन्ह ने सचे पातशाह जी तुहाडी आग्ञा मनी है तुहाडी आग्ञा च रहे ने पहला तो इथो आग्ञा मन के पृथ्वी चंद ने ना करती महादेव ने सत्संगी गोल मोल गल कर दिती ते महाराज तुहाडा वचन मन के भावे छोटे सी फिर भी लाहौर गए फिर लाहौर जाके तुहाडा वचन मनिया जिन्ना चिर तुसी बुलाया नहीं नहीं

नानकी जी। अज सारा जगत बेबे नानकी नूं बड़े सत्कार दे नाल बेबे नानकी जी इसे करके कहिंदे ने। कहिंदे बेबे कोलों पैसे लै लियो ते रबाब खरीद के लिया ते सतगुरां ने टिकाणा दसता रबाब कित्थों लै के आउणी है। मैं हर रोज तुहाडे नाल जिक्र करदा कि मेरा नगर उत्थे लागे उस एरिए दा होण दा करके मैनूं उन्हां पिंडां दे विच दी आम सुभावक जाण दा समां मिलदा। सुल्तानपुर दे पिछले पासे एक नगर है भरवाल, भरवाल दलिया दरिया सतलुज तो उरले पासे है, कपूरथले जिले दे विच ही उह पैंदा है। ते प्यारिओ सतगुरां ने दस दिता है कि बेबे कोलों पैसे लै जा ते भरवाल चल जा, उत्थे फरंदा रबाबां बड़ियां कमाल दियां बणाउंदा है, तू उथो एक रबाब लेके आनी है। गुरु प्यारे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं तुहानू सुनाउण लगा। सतगुरां दा हुक्म पा के भाई मरदाना जी बेबे दे कोल जांदे ने, पैसे लैंदे ने ते भरवाल पहुंच जांदे ने। उसे ही फरंदे दे पास जिहड़ा मिस्त्री सिंह सी, मिस्त्री दा गुरु का प्यार वाला खुदा दे प्यार वाला मिस्त्री सी, तो वह अपने हत्थां दे नाल सारी किरत करदा सी, वेचिया करदा सी, रबाबां वजा के सुरंगियां बना बना के वेचिया करदा सी। हुण भाई मरदाना जी कहिंदे ने कि प्रेमियां एक रबाब खरीदनी आ। हुण भाई मरदाना जी का हुलिया जिहा देख के फरंदा जी ने जवाब दिता, कहिंदे सजना है नहीं रबाब कोई बनी हुई है नहीं, तैनू कदों क तक चाहीदी है वह दस दे, आउण वाले टाइम विच बना दे सकदा है पर इस वेले बनी हुई रबाब है नहीं है। तो भाई मरदाना च कहिंदे सजना मैं पैसे लेके आया, तू मेरा हुलिया जिहा देख के मेरे कपड़िया वाल देख के अंदाजा जिहा ना लाई भी इन्हें खरिया पैसे देने कि नहीं, जिन्हें तू मंगेगा वह तू मैं रुपया दो रुपये वध देवगा। हुण उस वेले रुपया की कीमत घट नहीं सी और बेबे नानकी के पासों सत्त रुपये लेके गए सन भाई मरदाना जी। कहिंदे सजना जिन्हें मंगेगा दस मैं तेनू रुपया वध देवगा। तो उस फरंदा जी ने आख दिता, कहिंदे सजना मैं तेनू दसदा भी हाले तेरे वास्ते रबाब है नहीं। ते भाई मरदाना जी गौर नाल देखदे कहिंदे सिन्हा ओ जिहड़ी रबाब टंगी आ ओ की गल वेचणी नहीं, ओ रबाब बनी ते हैगी आ, मुकर दे का तो तुसीं ओ दे दो मैनूं रबाब, जे मेरे सतगुरु नूं ओ पसंद आ गई ते असीं रख लवांगे। ते भाई फरंदा जी आखण लगे, कहिंदे सज्जणा ओ वेचण वास्ते नहीं। कहिंदे की फेओ फेओ कादे वास्ते टंगी आ जे वेचणी नहीं? कहिंदे ओ वेचणी नहीं, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਬਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛ ਅੱਛ ਕਰ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਰਬਾਬ ਲਾਈ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮੁਟਿਆਰ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹਜੇ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ।
और किहदे गोचरे छोटे छोटे बच्चों नूं छड्ड के जाना सी। कुदरती गल है कि इस भाई मूलचंद ने गुस्से होना सी ते नाराज होए ने, रज के नाराज होए ने। जो आखना सी उन्हां आख्या भी नानक वे व्याह कादे वास्ते करवाउणा सी, आ बच्चों नूं किहदे आसरे छड्ड के चलिया। यह सारियां गल्लां गुरु बाबा नानक जी दे नाल कीतियां, पर गुरु प्यारिओ उह शांति दे पुंज धन गुरु महाराज ने कोई जवाब ना दिता, कुछ नहीं आख्या, कोई उदर नहीं कीता, कोई अड़ामा नहीं दिता भी तुसीं मैनूं किद्दां दीआं गल्लां आखदे हो। सब कुछ सुणी गए ते सतसंग जी गेरुए कपड़े पा के जोगियां वाले बस्त्र भाई मरदाना जी नूं वी पवा लै ते आप भी पा लै, रबाब कछ मार ली है ते हुण भैण नानकी जी बेबे नानकी जी अगे आउंदे ने, वीरा मैनू ते दस जा तू किधर नू जा रहा। हुण दो बच्चे ने घर दे विच गुरु बाबा जी दे, एक दा नां श्री चंद जी है, श्री चंद माड़ी जी सुरत दे विच सन, पर बाबा लक्ष्मी दास जी हले साल की उम्र सी। सो प्यारियो इन्हां दोनों बच्चों नू लैके बेबे नानकी जी अगे आउंदे ने, वीरा इन्हां बच्चों नू किहदे गोचरे छड्ड के चलिया। ठीक है, मैं इन्हां दा पालन पोषण माड़ा मोटा जो जिद्दां दा कर सकदी आं करांगी, पर मैं बाप दा सुख इन्हां नूं दे नहीं सकांगी। ते वीरा जिन्हां दे सिरां दे उत्ते बाप ना होण उह बच्चे विगड़ जांदे ने, इन्हां दा आसर बेबे नानकी इदां दे गल्लां करदे ने। ते धन गुरु महाराज उस दीन दुनी दे मालिक बेबे नानकी नूं गढ़ वकड़ी दे विच लै के कहिंदे, भैणे इह बच्चे मैं तेरे हवाले करके चलिया। ते सतगुर की कहिंदे ने, सो प्यार दे नाल ढाडी उस वेले दीआं।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड से।

नाम प्रीत लागी मन भीतर, मगन काओ हर दान रहाओ, सुखदाई पूर्ण परमेश्वर, कर कृपा रख हो मान, देह प्रीत साधु संग।

प्रभ एक अनक सर्वत पूर्ण बिख अगन न जली गह पुजालीनो दास अपनो जोत ज्योति रली प्रभ चरण सरण अना

दर्श बिहुना साध जान खिन टिकल न आवै हर बिन जू रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु न जाय निखेदिया हर स्यों जाय मिलना।

निर्गुण नीत अज अनाथ मैं, नहीं दोख बिचारे, नहीं दोख बिचारे, पूर्ण सुख सारे, पावन बिरद बखानिया। भगत वछल सुन अंचलो गहया, घट घट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गह लीने नानक दास अपने।

0: छूट गई संसारी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड।

मन रे राम भगत चित लाइए, गुरमुख राम नाम जप हिरदय, सहज सेती कर जाइए रहाओ। भरम भेद पाओ कबहु न छूटस, आवत जात न जानी, बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी। धंधा करत सगली पात खोवस, भरम न मिटस गवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद पसारा।

0: जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दुख सह।
1: जगन पाठ कसके करना, जगन नहीं करना, जजे तेदक का प्रभाव दे के उचारण करना। जिवे ज्ञानी जी ने बड़ा विशेष महंगा शब्द है, जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दुख सह।
0: राम नाम बिन मुक्त ना पावस, मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली बोले, बिन नावे निहफल मर भ्रम ना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संध्या कर्म ते काल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे।
1: सिखा पाठ बोला कर तो दोरे।
0: दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत न आवे, जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई, वस्त्र छोड़ तन नगन भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत कै बंध है भेख भया। जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राग भैरव महला तीजा, चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्व ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई।
2: गुरु खालसा साध संगत जीओ, धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज। सतगुरु जी का दीवान लगा होया सी, एक बहुत ज़्यादा पढ़िया होया विद्वान पंडित सतगुरु जी दे पास आया, जिस दे हिरदे दे विच जात दा हंकार बहुत ज़्यादा सी। उहदे अंदरों जात दा अभिमान, जात दा हंकार तोड़न वास्ते, मेटन वास्ते, खत्म करन वास्ते सतगुरु जी ने यह पावन पवित्र बचन अपने सुभाईमान मुखारबिंद तों कीते। सतगुरु जी ने कहा कि भाई, जातां दे विच जीवां नूं ये इंसानां नूं बंदियां नूं मजबां दे विच तुसीं वंडिया होया है, पर सारयां दे विच परमात्मा परिपूर्ण हो रहा सारे जीवां दे विच, अते इन्हां बंदियां दे विच, इन्हां जीवां दे विच परमात्मा ही परिपूर्ण हो रहा है। तां सतगुरु जी ने बचन उचारण कीते कि जात का गर्व ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। इस प्रकार दे वचन सतगुरु जी ने उचारण कीते ने। आओ जी सरवण करिए प्यार दे सहित।
0: जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकार रहाओ। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांडे घड़ै कुमारा। पंच तत्त मिल देही का आकारा, घट वध को करै बिचारा। कहत नानक एहो जियो, कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे।

नाम चित लाया ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहया ते हो लोए कलयुग में हर जियो एक होर रुत ना काई नानक गुरमुख हिरदय राम नाम ले हो जमाई भैरो महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुविधा मनमुख रोग व्यापे तृष्णा जलह अधिकाई मर मर जमह ठौर न पावह बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई हो मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग न जाई रहाओ सिमृत शास्त्र पढ़े मन केते बिन शब्द सुरत न पाई।

रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिले वड्याए, जिसनो मन वसाए, सत गुर भेटै ता फल पाए, सच करनी सुख सार से जन

माहे समाए गुरमुख ज्ञान तत् बिचारा ज्योति ज्योत मिलाए सो प्रभ साचा सद ही साचा साचा सब आकारा नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा भैरो महला तीजा काल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता सतयुग परम हंस बिचारी।

नानक हरण आखस नखी बिदारिया अंध दर की खबर ना पाई। राग भैरव महला चौथा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जन संत कर कृपा पाग लायण गुर सबदी हर भज सुरत समायण। मेरे मन हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण। रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमति ले राम रसायण। गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायण सब किलविख पाप गए गावायण। तू आपे करता

0: जिस का तुम हर राखिया पावै तिसकै नेड़ै कोए न जावै तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर।
1: हांजी सब तै पाठ इकट्ठा करना पोथियां च अलग अलग छापिया गया है। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, सब तै साब तै इदा नी, सब तै भरपूर। हांजी
0: पैरा

तौ कड़िया जे किछ होए तिंगाणे, तौ कड़िया जे भूल रंजाणे। गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते। प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों भावे त्यों करह निबेरा। द्वितीया नास्त इक रहया।

कही न लिखे, बिन विद्या कहा कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हौ त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथ

निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हमें अपराधी तुम बखसाते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ पार ब्रह्म

0: ना व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जाकी दृष्ट दुख डेरा टहे, अमृत नाम शीतल मान गहे, अनेक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मह ओणे सुभर भरिया, खिन मह सूके कीने हरिया, खिन मह
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।

मूर्त नहीं, सारियां मूर्तां जो है तेरिया ने। ये सब व्यापक है, सब सिलसिला जो है तेरा है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है बयान करा, खुदा ने मनुख नो आख्या जहां राज यक आब गिल आफरेदम तो ईरान ता तार जंग आफरेदी। इस तरह के जेडे शायर कवि आंदे ना, जिवें कदी आसमान ते बिजली चमकदी है एवें एक छिण वास्ते, एक सैकंड वास्ते, कदी कदी इस तरह के शायर, इस तरह के कवि किसी वक्त एक लम्हे वास्ते, एक सैकंड वास्ते पूरे ब्रह्म ज्ञानी आंदे ने। उस विच जदों इन्हां नूं इह झलक मिलदी है, अगे पिछे नहीं आंदे। संत हो जो हर वक्त संत है, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई मिल गया विछड़दा नहीं, बूंद सागर विच मिल गई। इस तरह दे शायर, इस तरह दे कवि इतने गहरे, कदी कदी इन्हां नूं एक झलक मिलदी है इस तरह जिवें अंधेरे च कोई बिजली चमकी है, ते थोड़ा जिहा चानना हो गया, लिशकारा हो गया। इस वास्ते उस समय इन्हां दे आखे हुए जिहड़े बोल आउंदे ने ब्रह्म ज्ञानियां नाल मेल खा जांदे ने, महापुरशां नाल मेल खा जांदे ने। जैसे इकबाल कहिंदा है, दरमियान कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बास में गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। ए प्रभु, तख्ते नाल तू मैनू पक्का बन के दरिया दे सुट दिता है, ते हुण तू मैनू ए कह रहे हैं भिजी भी ना ते किनारे ते लग जा। हुण किनारे ते लगना मेरी मर्जी है, ते भेजा ना हुण मेरी मर्जी है, तू ते बन के रख दिता मैनू। दरमियान कारे दरिया तख्ता बदम करदा मी, बाज मी गोयन के तामन तरम कुन होशियार बास। सब कुछ हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। इकबाल, सब कुछ हो रहा है, मैं तेरी कृत ते कृत देश तो बैठा है, हो रहे हैं मैं नहीं कर रहा, मैं हां ही नहीं। बाज में गोयन के दामन तरम कुन होशियार बास। सूफी संता ने भी इस मामले बहुत कुछ किया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल कहने ने जहां राज यक आब गिल आफरीदम तु ईरान ता तार जंग आफरीदी। ए मनुख देख, मैं जमीन बनाई, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, ते जिथे जिथे तक तेरी पहुंच हुई तू वंड के रख दिता, किधरे अफगानिस्तान बना दिता, ईरान बना दिता, तातार बना दिता, ए टर्की तुर्की बना दिता। इन्हां मुल्कां दे उसने नाम लिखे ने अपने रदीफ काफी दी चाल दे कविता दे। ए तू की कीता, जमीन तू इस तरह वंडी क्यों, तू टुकड़े टुकड़े क्यों कीती। जहां राज यक आबो गिल आफरीदम तु ईरान ता तार जंग आफरीदी। मन राज यक फौलाद नाब आफरीदम तु शमशीर तीरो तुफंग आफरीदी। मैं लोहा बनाया, तू बदूका बना लिया, तीर बना ले, तोपा बना लिया, ए तू की कीता। मैं लोहा इस वास्ते ते नहीं बनाया सी, ए तू की कीता। मैं ते तेरी वरतों वास्ते बनाया सी, कोई कारामद चीज जिस नाल कुछ तामीर होवे। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जद कोई मनुख तामीर कर रहा होवे और उस तामीर दे च लीन होवे, जितना लीन होवे उसका हंकार नहीं होवेगा, उस वक्त रब दे नेड़े आउंदा। एक कवि जद कविता दे च लीन होके कविता लिख रहा होंदा, रब दे नेड़े आउंदा है। एक मुसव्वर जद लीन होके तस्वीर बना रहे आउंदा, रब दे नेड़े आउंदा है। एक संतराश जद लीन होके बुद्ध घड़ रहे आउंदा है, रब दे नेड़े आउंदा है। और जद जिस वक्त कुछ मनुख मिटा रहे आउंदा है, रब तो दूर आउंदा है। ये भी मर्स करते हैं, बनाण लगे नेड़े आउंदा है।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮੰਦਿਰ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: मैं एक दफा जींद दे च गौ ले बैठा, खरीद बैठा, बड़ी खूबसूरत सी चंगी लगी मैनू। हर साल मैं उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ज्योति जोत समान पुरब ते जाना हुंदा। महापुरुखां दा डेर है ओ मनांदे ने, संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर। ओ मेरे कोल पुछण लगे, सुनया तुसी गऊ खरीदी है? मैं क्या, जींद ते रोहतक एक गऊआं करके मशहूर है, अच्छियां अच्छियां गऊआं। मैं कह मैनू बड़ी चंगी लगी है, मैं ले लई। ओ आ गए, कहण लगे मैनू दिखाओ। मैं कह देखो, जींद शहर विच बड़ियां सरावां ने जो गऊआं नाल भरियां रहिंदियां ने। मैं चल के दिखाई, उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया। कहण लगे ज्ञानी जी इहनू लैके जा रहे हो? मैं क्यों, इहदे ठीक लक्षण नहीं ने, औखे होवोगे, दुखी होवोगे।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दी झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट।

0: ना दे।
1: क्या वाकई परमात्मा समझ दे चाह जांदा? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर वो समझ दे चाह जांदा तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु, तू ते सागर दी तरह है, मेरी अकल मेरी समझ ते एक छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ए समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद करन लग पैंदा। जिन्ने चिर तक साड़ी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हिरदा याद नहीं कर सकता। वाहगुरु वाहगुरु जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। क्या समझ दे च आ जांदा है? नहीं। समझ समझ के ए समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात दी ऑटोबायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहिंदा है, जद मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेड़दा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी, मैं सब कुछ जानना, सब कुछ जानना। तुसी कुछ भी पुछो ते मैं दसांगा। कहिंदे बच्चियां दा मैं लीडर बनिया होया सी, नेता बनिया होया सी। बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन, बच्चियां दा मैं मुखी। कहिंदा जद मैं जवान होया तो फिर मैं ए कहना शुरू कीता, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा, नहीं जानदा। सारे सवालां दा जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानता। कहिंदा आज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहिंदा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं जान जान के ए जाने है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जाना छाना रे। ओही महामूरख है जेड़ा कहिंदे मैं सब कुछ जान ले, खाक जानेगा? ज्ञान दा ते सागर पिया बार, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी? जिंदगी भर दी जानकारी मनुख दी इंज है जिवें सागर दे च इक चम्मच पानी दी मिली, इस तो ज्यादा नहीं, इस तो ज्यादा नहीं। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। परमात्मा दा रस उस दिन प्राप्त होंदा है कदों? जद मनुख इंद्रियां तो उच्चा उठदा है, उन्हों इंद्र जीत कहिंदे ने। इन्हें जीत लिया इंद्रियां नूं। नास्तिक कहिंदे ने ऐसी कोई दुनिया ही नहीं, ऐसा कोई रस ही नहीं है। क्यों? ऐसा शरीर नूं कोई होर इंद्रिया ही नहीं है। कुछ वेख के रस मिलेगा, कुछ सुन के, कुछ चख के रस मिलेगा, कुछ स्पर्श करके, कुछ सुन के, होर भी कोई रस है। ऐसा शरीर रस मान सके कोई इंद्रिय ही नहीं है। बड़ी प्रबल दलील देंदे ने नास्तिक इस संबंध च, बहुत कुछ कहंदे ने। इस वास्ते ऐलानिया कहंदे पानी दी लोड़ है गुरबाणी दी नहीं, धन दी लोड़ है धर्म दी नहीं, पदार्थां दी लोड़ है परमात्मा दी नहीं। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है, परमात्मा तो बिना जी सकदे हैं।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: इको एक हरमन प्यारा ग्रोसरी स्टोर फ्रूटी कैना जिना दे प्राइसेस होलसेल नालों भी काट हन। फ्रूटी कैना दी नवी लोकेशन साउथ सरी विच खुल गई है 2990152 स्ट्रीट। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 7 अगस्त तो 12 अगस्त तक। लाल गंडे 25 पाउंड दा बैग 18.98 दा, पीले गंडे 50 पाउंड दा बैग 20.99 दा, बिना बीज वाला हदवाना 68 सेंट्स नू पाउंड, अते 4 पाउंड इंडिकन चिट्टे छोले 3.99 दा।